0: गरीब होके भी महंगी शराब पीता। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
1: हाँ
0: तुम इतना तो मुस्कुरा, क्या गम है जिसको छुपा रहे, क्या गम है जिसको छुपा रहे, तुम इतना तो मुस्कुरा।